सर भय तैरे जोई, अधम सोनार जानो जग सोई। बिना अवसर मिलिया, बिना मौका मिलिया, उसने बस अपनी असमत साम के रखी है, वरना वो लुटान नो तैयार है। ये सब तो नीवी है, ये सब तो निखेद है। अगर ऐसा निखेद पना स्त्री ते लागू होंदा है, तो फिर पुरुषा ते भी लागू होंदा है। पर गुणा दे तल ते अगर देखी है, तो जिथे पुरुष रब दे गुण प्राप्त कर सकता है, स्त्री प्राप्त कर सकती है। घर विच धन संपदा है, वाकई उस दे जे अद्धा अधिकार पुरुष दा है, अद्धा अधिकार स्त्री दा है। आज ते कानून भी ऐसा मनन लग पे है। एक गल वखरी है कि पुरुष दा अहंकार बराबरी देन नू अजे भी तैयार नहीं है, लेकिन इस हद तक ते बराबरी मनी जाएगी। शरीर अलग है, मन अलग है, जिम्मेवारियां अलग अलग ने। अगर पुरुष स्त्री दी नकल करे, स्त्री वर्गा बनना चाहे, मुश्किल। और अगर स्त्री पुरुष दी बराबरी करके पुरुष जैसा बनना चाहे, ये उसकी सब तो वड्डी भूल होवेगी। क्यों कि पुरुष जैसा जब तन नहीं है, तो मन भी पुरुष जैसा नहीं। पुरुष जैसे कपड़े पाके, पुरुष जैसियां जुतियां पाके, पुरुष जैसी चाल चल के, पुरुष जैसे बोल बोल के, और पुरुष दी तरह ही गंदे नशे जो है करके, स्त्री पुरुष जैसी ते नहीं हो सकेगी, पर स्त्री स्त्री जैसी भी नहीं रहेगी। हाँ, इन्हों बारों भी समझिया समझाया जा सकता है। अगर चमेली गुलाब जैसा होने की कोशिश करे, तो गुलाब ते नहीं हो सकेगी, पर चमेली चमेली भी होने तो शायद रह जाए। जिथे जिथे स्त्रियां ने बैरूनी तल ते पुरुष की बराबरी करनी चाहिए, पुरुष की तरह ही काम करना है, पुरुष वालियां जिम्मेवारियां चुकनियां ने, तो होया कि घर उजड़ गए। सियाने ते कह रहे ने, पृथ्वी ते बस हुण मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते दिखाई नहीं देंदा। घर ते ओ जो वसदा है, रसदा है, तो घर वसदा है स्त्री करके। ते जद घरों स्त्री ही निकल जाए पुरुष दी तरह, तो घर घर ना रहा, वो ते सिर्फ मकान रह गए, इट्टां दी ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे दा सहारा है, असली दौलत है। जिस दिन दी स्त्री बाहर निकल गई, संतान भी टूट भज गई, बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सकी, मां दा प्यार नहीं मिलिया, मां दी गोद नहीं मिली, ममता हिरदे विच उना दे प्रवेश नहीं कीती। तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखणे होए, उथे औलाद भी सखणी होई। धन ही धन रह गया जो जड़ है, और इस तरह स्त्री ते पुरुष दी मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता दा मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लई बन सकदा सी, धन उतना नहीं बन सकदा। लेकिन मनुख ने, स्त्री ते पुरुष ने जितनी धन दी चिंता की थी, औलाद दी उतनी चिंता ना की थी। आन वाला भविष्य ते बच्चियां दे हाथे सी, तो मनुख दा भविष्य बिगड़दा जा रहा है, बिगड़दा जा रहा है, क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे ने, प्यार तो हीण होंदे जा रहे ने, अहंकार घृणा नफरत सारी दुनिया दे इस नवी पनीरी दे अंदर वध रही है, जिस दा कारण है स्त्री दा पुरुष दे तल ते बैरूनी रूप दे बराबरी करना, और पुरुष दा इस बराबरी नो किसे हद तक कबूल करना और किसे हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे, बस घर

आया सुचा नंद भी सामने आया। इन्हें मथे दा तिलक लाया है, तेर तोती है, तेरे धागे दा जनेऊ भी गले पाया है, सामने आन के खलो जांदा है। वजीर खां आंदा है, तैयारी होई। काजी ने पढ़ के फतवा सुनाया है। आखर तैयारी आरंभ हुई। काजी एक बार फिर पुछदा है, कहिंदा है बच्चो तुहाडी कोई आखरी ख्वाहिश? मैं कल अर्ज गुजारी सी, केवल इशारतन बेनती कर रहा, तुहाडी कोई आखरी ख्वाहिश? ते कहन लगे हां साडी आखरी ख्वाहिश है। पुछया कि? आख्या साडी आखरी ख्वाहिश ए है कि जिस तलवार दे नाल साडे सिर साडे धड़ तों जुदा कीते जान, उस तलवार नूं साडे शरीर विचों निकलिया होया खून लगेगा। ओ खून दे तुपके वगाउंदी होई तलवार लैके ठंडे बुरज दे अंदर साडी दादी दे कोल चला जाई, तां कि दादी जी नूं समझ पै कि बच्चे मेरी शुभ सिख्या दा पालन करदे होए अपने प्राण पंखेरू छड के दादा जी दी गोद दे अंदर जा बराजे ने। खैर दीवार दी चनाई आरंभ हुई, अजे गोडियां तक ही दवार गई है, ते सामने कोतवाल बोलदा है। कोतवाल कहन लगा बच्चो तुहानू अजे भी वकत दिता जांदा है, अजे भी मेरे वल्लों तुहानू एक नेक सलाह है, जे तुसी दीन कबूल कर लो तुहाडी जान बख्शी जा सकती है। दोवें बच्चे निडर हो के कहन लगे कोतवाल ते काजी ए तुहानू हक हकूक दिता किन्ने कि तुसी सारिया धर्मां दे दरवाजे करो बंद ते एक ही धर्म दा दरवाजा खुला रहे, केवल इस्लाम दा ही दरवाजा खुला रहे, ए हक तुहाडी झोली किन्ने पाया है? चाहिदा ए है कि बंदा हर धर्म दे अंदर अपने धर्म नू मन सके, धर्म दी पूजा कर सके। मैं केवल एक इशारे वजों बेनती करदा होया अगे चला। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे समय ना लाहौर दे अंदर एक मौलवी नमाज अदा करन दे समय मस्जिद दे अंदर आवाज देंदा है, जिनू आपां कह दिंदे आ बांग देंदा है। नेड़े सी किधरे सिखां दा घर, ते सिख सी तंग सोच वाला मुतसबी जामे वाला। उन्हें मौलवी नूं वार वार जाके कहना आवाज ना दिया कर, साडा राज है, साडा राजा है, सिख राजा, शेरे पंजाब तू उची उची रौला ही पाउंदा रहिंदा। मौलवी ने आवाज देनी बंद कीती, पर चला जांदा है शिकायत लेके शेरे पंजाब दे दरबार दे अंदर। आख्या महाराजा साहब तुहाडे एक सिख ने मैनू इस कर्म करन तों वरजिया है कि मस्जिद दे अंदर मैं बांग ना देवां, आवाज ना देवां। शेरे पंजाब ने सिपाही भेजे, सिख नूं फड़िया गया ते सिख नूं पकड़ के लियांदा गया शेरे पंजाब दी कचहरी दे अंदर। शेरे पंजाब ने फैसला सुनाया, वह कहन लगा सिखा अज तो बाद इस मौलवी दे रोटी रोजी का इंतजाम तू करेगा। वो कहन लगा जी ये कैसी सजा? वो कहन लगा सजा यही है, जब तू ओदे धर्म का लालन पालन करन तो रोक रहा है, ओदी रोटी का जरिया है ओनू बांग देन तो रोक रहा है, वो बांग नहीं देगा, बांग भी तू देगा और इदी रोटी का इंतजाम भी तू करेगा। धर्म दे जिहड़े मनुख हुंदे ने लीडर जन हुंदे ने या डिक्टेटर हुक्मरान हुंदे ने, उन्हां नूं इन्ना खुली सोच दे मालक बन के चलना चाहीदा है कि सारे धर्म उन्हां नूं प्रवान होण। हिंदू धर्म अपनी जगह ते मुबारक, मुसलमान अपनी जगह ते मुबारक, ईसाई अपनी जगह ते मुबारक, ते सिख अपनी जगह ते, सारे धर्मां दे दरवाजे खुले रहिण। साहिबजादे कहण लगे हक हकूक तुहानूं किन्ने दित्ता है कि बाकी धर्मां दे दरवाजे रहण बंद ते केवल इस्लाम दा दरवाजा खुला रहे। कोतवाल थोड़ा कड़कवी आवाज दे अंदर बोलदा है, इह कहण लगा द्वार दिसदी, द्वार दे पार तुहाडी मौत है। इह कहण लगे हां द्वार भी दिस रही है, ते द्वार दे पार सानू अपनी मौत नहीं, द्वार दे पार सानू अपने दादा जी दी गोद दिस रही है। मरते असीं बड़ा समा पहला दे चुके हैं, असीं अपने मन नूं खुदावन दे चरणां दे नाल जोड़ के शरीर दा मोह त्यागिया है। तू सानू मारना चाहुंदा है, असीं तेरे तो मरना नहीं, जिन्नू मार के सानू मारना चाहुंदा है ओदे मारिया असीं मरना नहीं। शरीर नूं कट के तू सानू कटना चाहेगा, असीं कटे नहीं जाना। साडे शरीर नूं जला के तू सच दी आवाज नूं राख बनाउणा चाहुंदा है, पर सच दी आवाज होर कई गुणा उच्ची होके भड़केगी। खैर मैनू एक

इस जीवन नू गुरु अमरदास दे वेले बयान कीता है। चेते रखना गुरु कोल बैठिया भी जेड़ा पुग चुका है बाहरों ओदा काम खोर नजर आउंदा है पर अंदरों टिकिया होया वो किसी खोर थां ते भी जुड़िया होए दो काम भी कर सकदा है। आ गुरु अमरदास दे वेले जदो बौली दी सेवा पई हुंदी है ना एक भी बीबी ने सिर ते टोकरी चुकी ते टोकरी सट के आना ते अचनचेत अपना सज्जा हाथ जेड़ा हवा विच मार देना ते इंज लगना जिवें किसे पींग नूं हुलारा देनी है। लंघ भी आउंदी ने ओ हाथ मारना ते सिखां ने कहा महाराज आ माई तां झली है। हर इतिहासकार ने इहदा जिक्र कीता है। पुछया क्यों कहिंदे ने टोकरी भर के तुरदी है ते कई वारी चुक्की चकाई भी हाथ मारी जांदी है कई वारी टोकरी सुट दिया हाथ मार दिए ते जदो कोल आई ते साहब ने कहा माई आ सिख की कहिंदे पए ने। कहन लगी महाराज दसो। साहब कहन लगे ए आखदे ने तू मिट्टी दी टोकरी चुक के तुरनी है ते अचनचेत हाथ हलानी है जिवें किसे पींग नूं झूटा देंदी होवे लोक कहिंदे ने झली है। अगो उस माई ने बड़े कमाल दी गल कही। कहन लगी दातिया मैं अपने आप नूं लुका के तुरी सां पर की करां कई वारी झिलदा हथ प्रगट कर दिंदा। कहन लगे दस खां तू हथ क्यों हलानी है। उन्हने कहा सतगुरु तेरे तो कुछ गुजा नहीं पर जे तुसी कहिंदे हो दसां। कहन लगे मैं आई काबल तो हां मेरा बच्चा अजे न्याणा है मेरे तो बिना रह तां जांदा है रोटा रोटी प्रसादा पानी सक लैंदा है पर जदों पंगूड़े विच बैठा है ना ते तेरी कृपा नाल मैनू इन्नी इथों समझ पै गई है जदों बच्चा थोड़ा जिहा रोण किते लगदा है ते मैं अपने हाथ दे हना हलारे नाल उहदे पंगूड़े नू झूटा देनी पई। दाता मैं पोहां ते बैठी केवल उहनू झूटा देनी आ जे कोई पुछे भी इह हो सकदा प्यारिओ इह खेड हो सकदी है। ते पुछया गुरु अमरदास ने बीबी ए कित्थों तैनूं मिल गया। उन्हें एक गल कही कहिंदी दाता मेरा भरता करदा बंदगी ओ जुड़िया प्रीतम दे चरणां विच कहिंदी मैं कुछ भगती नहीं कीती मैं सिर्फ ओनू स्वामी नूं तेरा सिख जान के सेवा कीती। उन्हें इको गल कही कि तू मेरी ना सेवा कर गुरु अमरदास दे घर विच जा सेवा कर। जे कहिंदे ने मैं पुछया पिछों बच्चा रोवेगा उन्हें इन्ना बचन कहा कि भलीए गुरु घर विच बड़ियां रहमतां नी तू उत्थे बैठी भी बच्चे नूं चुप कराई जाएंगी। कहिंदी तेरी टोकरी चुकी पता नहीं तेरी टोकरी ने की कृपा कीती आ मेरे अंदर दे कपाट खुल गए ने। साध संगत यही कारण भाई वीर सिंह होरां ने एक गल बड़े कमाल दी कही कई वारी मैं अर्ज कीती है। ओ कहिंदे ने जिन्ना उचियाईयां उत्ते बुद्धि खंभ छाड़ ढठी मल्लो मल्ली दिल उथे मारदा उड़ारियां प्याले अन दिस नाल बुल लग जान उथे प्याला दिसदा नहीं पर रस चखदा पिया सिख प्याले अन दिस नाल बुल लग जान उथे रस ते सरूर आवे झूमा आउण प्यारियां। कहिंदे ने जदों कोई बंदगी वाले दी गल करदा लोग कहिंदे ने झूठ है। भाई साहब कहिंदे ने ज्ञानी सानू होड़दा है ते वहमी ढोला आखदा मारे गए ने ओ जिन्ना लाइया बुद्धों पार तारियां। ए बुद्धि दी गल नहीं भाई साहब कहिंदे ने बैठ वे ज्ञानी बुद्धि मंडले दी कैद विच वलवले दे देश मेरियां लग गईयां यारियां। कहिंदे ने मैं तां किसे होर देश दी गल करना यही बचन भाई गुरदास ने अपनी वार नंबर चार विच कीता है। कहिंदे ने गुरसिखी गुरसिख सण अंदरों सियाणा बाहर भोला जे बाहरों भुल चुक बोलदे धी खरे हर भाणे अंदर सियाणा बाहर भोला। कहन लगे फिर ओदा किन्ना कु अंदर टिकया वाहगुरु गुरु शब्द लै पिरम प्याला चुप च बोला ओ अंदरे अंदर नाम दे प्याले नूं छकदा पे। ए रहमतां साहिब दे दर ते ने हजूर अज कह रहे जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाणे राम राजे। गुरु रामदास कहिंदे ने जे तेरे अंदर प्रीत है तू सब तो सियाणा तू सब तो ज्यादा सोझीवान है। ते पुछया महाराज सियाणे तां दुनिया विच बड़े ने। कहिंदे ने मैं उस सियाणप नूं परवान नहीं करदा जे बाहरों सियाणा अंदर प्रीत नहीं। शायद यही कारण साहब ने बाणी विच सियाणियां दी गिनती कीती कहन लगे अत सुंदर कुलीन चतुर मुख न्याय।

लता लताड़ दा तुर गया। दूसरा पड़ा भाई जैसे ने भाई जैते ने अंबाले कीता है। इथे एक भाई सिख सी एदा नाम सी देवा राम, और रमदासिया सिख सी ओदा नाम सी राम देवा, ते ओ भी बैठा है। कांगरी नदी है, आ जदों आपां करनाल तो अंबाले तक आने एक नदी आउंदी बरसाती, ओदा नां है कांगरी नदी। इहने कीती पार ते कांगरी नदी दे कंढे इक जंड सी थक गया, इहने रखिया उत्थे सीस ते जोड़े ला के कांगरी नदी पार करके ना उत्थे फिर पुछदा कोई इत्थे सिखां दा घर है, क्योंकि सफर बड़ा है। तो उन्हें कहा भी एक घर है इतने एक महले अंबाले, और रमदासी सिख रेंदे जी। मन ने कहा की पता कोई भावना वाला हो, टोकरा चुकिया हनेरे विच उहदे घर चला गया, दरवाजा खड़काया, कहिंदा मैं रात रहना। वह कहिंदा सिखा दस, उन्हें बस्तर विछा दिते। कहन लगा नहीं, इस टोकरे नूं उच्ची थां ते रख दे, मैं जमीन ते बहना। वह कहिंदा इस टोकरे विच की है, उन्हें कपड़े ला के दिखाया ते गुरु तेग बहादुर जी का शीश। उन्हें भी नमस्कार की, सारी रात और रमदासिया सिख सुता नहीं, साहब की याद गा रहे उत्थे। वह भी सारी रात नाले रोंदा रहा, नाले प्रीतम की याद भी जुड़िया रहा। दिन चढ़िया, हुण तीजे पड़ां ते तुरना। चंडीगढ़ के नेड़े एक गुरुद्वारा है नाभा साहब, जिन्हों नाढ़ा साहब भी कहिंदे। इत्थे एक मुसलमान फकीर रहिंदा जिहदा नाम सी दरगाही शाह, ते ए बजुर्ग हो चुका सी, ते रोज अरदासा करदा सी, गुरु तेग बहादुर तेरी संगत करके एक दिन किनका मिलिया सी, पर एक वारी देख ता सही जिहड़ा फल तू बूटे दा बीजिया सी अज ओ फल पकण ते आया है। जांदी वारी बीज पाण वाले माली इस फल नू देख ता जा, तेरा फल पाया होया बीज पक गया। जदों कहिंदे ने ए रातो रात फिर उसे नाभा साहिब पहुंचे, उत्थे वेखो गुरु सबब बणांदा गया। मैं पहले दिन आरंभ विच अरदास कीती सी कि गुरु कलगी वाला अज भी कहिंदा तेग बहादुर सिमरे है, घर नौनिंद आवै ताए सब थाई होए सहाय। ओ ता सीस लैण तो बाद भी सब थाई सहाय हुंदा। मैं अर्ज करा एक खेल विचों निकलन लगा, मैं समा तुहाडा 15 मिंट होर लैणा है। अज कृपा करके गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास है। अबदाली ने एक गल पुछी सी सिख नूं कैद करके, वह कहिंदा तुहाडे कोल घोड़े चंगे नहीं, तुहाडे कोल बस्त्र चंगे नहीं, तुहाडे कोल शस्त्र चंगे नहीं, वो तुसी लड़ाई करदे हो मेरे सिपाहियां दे, तुसी पैर खोड़ देंदे हो, तुहाडे कोल ताकत कैड़ी है। उन्हें एक गल कही बड़े कमाल की, कहिंदा जदों घरों तुरने आ ना धर्म युद्ध लई, धर्म लई तुरीए, ते साडे अगे गुरु तेग बहादुर का शीस दौड़दा हुंदा, ते जदों गुरु तेग बहादुर का शीस आउंदा फिर असीं परवाह नहीं करदे, भावें अबदाली होवे भावें अबदाली का प्यो होवे, असीं वढ के रख दिंदे। साडी अगवाई गुरु तेग बहादुर का शीस करदा। जिदन सरहद फतह की उदन भी कहा कि चलो गुरु तेग बहादुर का शीस अगे भी आपां तुरीए। इहदा मतलब सी कोई कि गुरु तेग बहादुर जुल्म नाल अड़ खलोता है, ते उहदे शीस तो कुछ सिख्या लैके आपां तुर पईए। भाई साहब तुरे ने भाई जैता, ते अज इन्हां ने चौथा पड़ाव वैसे कीता, बनदा तीजा। इत्थे फकीर दरगाही शाह, इह शाम दे वक्त फकीर अपने तकीए विच दीवा पिया बालदा, आवाज सुनी इहदी कुल्ली दे पिछे कोई बह गया। इहने पुछया तू कौन, कहन लगा मैं राही। ते जदों चेहरा देखिया इहदे मूंह विचों आवाज सुनी धन गुरु नानक, धन वाहिगुरु, उन्हें समझिया सिख। कहन लगा तू सिख है, कहिंदा हां, कहिंदा फिर कखां दी कुल्ली विच आ, मैं भी गुरु तेग बहादुर दा सिख हां, मैं फकीर हां, आ मेरे कोल। उन्हें नमस्कार कीती, कहिंदा गुरु तेग बहादुर जी नूं सुनेहा दई आनंदपुर कि तेरा जिहड़ा पाया होया लाया होया बूटा सी ना वह पकदा पिया, एक बारी देखता जा उस बूटे वल। ते जदों इन्नी गल कही उन्हें टोकरा सामने रख दिता, आशीष है गुरु तेग बहादुर दा। उस दरगाही शाह दियां भुब्बां निकल गईयां, कहन लगा या औरंगजेब तेरियां जड़ां पट्टियां गईयां, अज तो बाद तेरे राज ने नष्ट हो जाणा है। सारी रात वो मुसलमान फकीर खलोता रहा, बैठा नहीं, सारी रात खलोता रहा। ते इन्हें भाई जैते नूं आराम कराया, दिन चढ़िया ते तोरन लगियां अखां भर आईयां, ते कहिंदा कहीं मेरे गुरु गोबिंद सिंह नूं गुरु गोबिंद राय नूं कि कृपा करे, इस बुढ़े ने छेती तुर जाना कंधी ते रुखड़ा है, गुरु होवे उहनूं कही एक वारी फेरा पा के इस फकीर नूं निवाज जाए। ते गुरु कलगी वाले स्पैशल आए सने नूं मिलन वास्ते, नाभा साहिब आए नहीं इस

सुन ली, पर कलगी वाले चोजी प्रीतम अज दोनां दी खबर सुन के भी उस करतार दे रंग विच रंगे रहे। सिखां दे नेत्र तां छलके पर चोजी प्रीतम दा अंदर भाणे विच ते रजा विच जुड़ गया। हजूर ने इथों फिर चल के जफरनामा लिखिया है ते ओ जफरनामा जित दी चिट्ठी है ते उस विच एक गल बड़े कमाल दी कही औरंगजेब नूं ते शब्द लुका के नहीं स्पष्ट शब्द कह औरंगजेब तू ईमानदार नहीं पांच वक्त दा नमाजी जरूर है पर सच जानी तेनू मुहम्मद साहब ते यकीन नहीं लोग कहिंदे ने तू मोमन है तू रब बारे की पहचानना है तेनू तां खुद पहचान नहीं तू मर के केड़े पासे चले जाना अपने आप नू पहचानी हजूर दे सफरनामे दे शब्द सन ना ईमान परस्ती ना ओजाए दीन तू ईमान परस्त नहीं तू बेईमान है ना ईमान परस्ती ना ओजाए दीन ना साहिब शनासी तेनू रब की पहचान नहीं ना मोहम्मद यकीन जितना मर्जी तू रौला पाई जा सच जानी तेनू मोहम्मद उत्ते भी यकीन नहीं क्यों कहन लगी जे यकीन हुंदा ते कुरान की कसम चुक के कदी तेरे सूबेदार मुकर देना। दूसरा बचन कीता कहन लगे मर्द किन्नू कहिंदे ने प्यारियो मर्द शब्द असीं वरतने आ मर्द का संबंध केवल ए शब्द नहीं मेल फीमेल गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने नारी जां नर इहदे लई शब्द मर्द तक नहीं मर्द केवल होवे भावे इस्त्री जामा होवे ओदे अंदर भी जो कुछ है ओ जबान तो कहे जो कुछ जबान ते है ओ अपने अंदर नूं कमा के दसे ए मर्दाऊपणे दे चिन्ह ने ते जेड़ा जबान विच सच दी गल करे ते अंदर कूड़ दे गड्ढे ढोई जाए बाबा जी कहिंदे ने असल विचो मर्द है। हजूर ने एक शेर कहा कहन लगे खमू मर्द बायद शवद सुखन वर मर्द होवे जेड़ा सुखन का कौल का पक्का होवे खमू मर्द बायद शवद सुखन वर ना शिकमे दिगर दर दहाने दिगर जिदे ढिड विच कुछ ते मन विच कुछ होवे ओनू मर्द किवें कहा जाएगा। सतगुरु ने जफरनामा लेके प्यारे भाई दया सिंह ते प्यारे भाई धर्म सिंह नूं भेजिया है तो जो दिओ चार लाल शहीद हो गए ने माता गुजरी जी शहादत दा जाम पी गए ने मजैल पहुंच गए ने अपने घरां विच क्योंकि आपां इस लड़ी नूं खदराने दी ढाब तक लिजाणा है। मजैल पहुंचे ने अज चबाल दी धरती ते एक सिख दा चलाना होया है ओदी मातम पुरशी लई इकट्ठे होए ते आनंदपुर साहिब तो विछड़े होए सिख भी आ पहुंचे जेड़े कह के आए कि असीं भुख नहीं जर सकदे ओह भी आ पहुंचे ते उस मातम पुरशी ते गल चली कि सुनिया सी आनंदपुर साहिब नूं घेरा पै गया की बनिया है उत्थे ते इन्हां विचों चौधरी जेड़ा सी ओह सी भाग सिंह चुबालिया। भाई मां सिंह ने तां टुट्टी गंढी कह सच जाणियो त्रेड़ा पाण वाले दा नाम सी भाग सिंह चुबालिया इह वी उत्थे मातम पुरशी ते आए जदों पुछया गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहिब दी धरती ते कहिंदे ने जिहड़े भावना वाले सन उहनां दे अंदर छल काहे कि आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी ने छड्ड दित्ता है। दूसरी गल कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो वड्डे लाल नेत्रां दे सामने शहीद हो गए छोटियां नूं नीयां भी चिण दित्ता बुढ़ी माता शहीद कर दित्ती। जदों इन्ने शब्द सुने ते जिहड़े आनंदपुर साहिब दी धरती नूं छड्ड के आए सन अंदर बिल कुटिया मना बाबा फतेह सिंह वर्गे वंगार के चले गए। गुरु गोबिंद सिंह ने तां अपने पुत्र परिवार दा कोई जीव भी ना सांभिया ते असी कास वास्ते विछड़ के आ गए। मैं अर्ज कीती विछोड़ा दुख है जितन पता अंदर नूं लगा कि गुरु के लाल शहीद हो गए अंदर तड़पिया। मन ने कहा की करनी इस तन नूं ढो के लै जा गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा विच ते चरण पकड़ के ओह तों माफी मंग लै सच्चे पातशाह सानू बेदाहमियां नूं कृपा करके बख्श ले। एक अदीब ने बड़ी सोहनी गल कही ओ कहिंदा धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह तेरे नाल मैं दया तशबीह किन्नू कोई धरती दा बंदा नहीं लभदा कोई अवतार नहीं लभदा जिदे नाल मैं तेनू तशबीह दे दिया कह दिया मेरा गुरु गोबिंद सिंह ऐसा है। पुछा जी क्यों कह लगे इस कृपान दी थां ते सानू बचान लई तू पिता दी पसली अपने ढाके बनी है हाथ तेरे विच कली ढाल नहीं तू ढाल दी थां ते पुत्रां दीआं खोपड़ियां पकड़ियां। उन्हें शब्द बड़े भाव पूर्त कहे तेरे नाल मैं दिया तशबीह केनू हर गल पई जापदी ओपरी है ढाके तेग नहीं पिता दी पसली है हाथ विच ढाल नहीं पुत्र दी खोपड़ी है पुत्र दी खोपड़ी पिता दी पसली गुरु के सिखो एहो

जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर

0: साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक पूरा इतिहास जिहड़ा है ये 2.5 लाख काव्य पंक्ति बनती जिहड़ी कवि संतोख सिंह ने उचारण की, एक दो नहीं 2.5 लाख। जिदन ये ग्रंथ तैयार होए ते उस दिन भाई साहब उरी इन्हां ग्रंथां नूं लैके श्री अकाल तख्त साहब ते आए सन। उस सिख की निर्माणता तको अज भी विद्वान बड़े मिलणगे लिखारी, पर वो चार पन्ने का कोई छोटा जा पैंफलैट भी लिखद, ट्रैक्ट को लिखद, तो भी कह दिंदा सब जिहड़े हक ने वह लेखक दे राखवे ने, मेरी इजाजत तो बिना इनू कोई छाप नहीं सकता। जिस गुरमुख ने 2.5 लाख कविता की पंक्ति उचारण की वो सारे ग्रंथ लैके अकाल तख्त आया ते आके उत्थे कहा कि यह सतगुरु गुरु नानक साहब की दात है, ये खालसा पंथ की इमानत है, इनू सांभ लो, ते जे एदे विचों कोई भुल होवे उनू तुसी मेरी भुल जानना, ते मेरे गुरु का जीवन जिहड़ा वह तो सूरी की तरह चमकदा पिया, भुलां मेरियां होणगियां, महिमा गुरु की होवेगी। डॉक्टर तारण सिंह एक विद्वान होए ने पटियाला यूनिवर्सिटी विच, उन्होंने लिखे है केंद्र ने भाई साहब भाई संतोख सिंह ने ग्रंथ भेट किए, इन्हों अकाल तख्त वालों सरपाओ मिलिया, उस साल ये घर गए ने, ते एक दिन अमृत वेले जाण तो बाद परिवार समेत आए सन, अपने घर गए जाके अमृत वेले इशनान किया, ते जदो सिमरन विच बैठे ने इस गुरमुख प्यारे ने अपने शरीरक चोले नूं भी सिमरन विच त्यागिया, समाधि विच बैठे ने, जदो परिवार ने जाके उठाया ते देखिया केवल शरीर है पर अंदर वाला हंस तां उस प्रीतम दे देश विच पहुंच गया है जिदियां कथा कहानियां करन भाई संतोख सिंह आए सन। डॉक्टर तारण सिंह लिखदे ने सिखो उहदे विचों ऊण ताईयां ना तको, समझो इस गल नूं भाई संतोख सिंह केवल आए ही इस करके सी कि दसां पातशाहियां दा जीवन एक थां ते इकत्र करन वास्ते। जदों कोई मनुख लिखदा भुलण हारे गलतियां बड़ियां हुंदियां ने, ओ ग्रंथ दी विचार अज फिर शुरू होण लगी है। गुरु प्यारियो प्रसंग आप पिछोकड़ विच सुन चुके हो, गुरु अर्जन देव जी महाराज अमृतसर दी धरती ते विराजमान ने, क्योंकि उस वक्त इस शहर का नाम सी गुरु का चक, कुछ चक गुरु का भी कहिंदे ने, इहदे नाम बदलते रहे ने, रामदासपुर भी पिया है, सुधासर भी पिया है, हुण आपां इहनूं श्री अमृतसर साहिब कहिंदे। हजूर अमृतसर सेवा पै करांदे ने, कवि जी दे मुताबक संतोख सर दी सेवा करांदियां उत्थों एक मठ निकलिया जिहदे विचों एक जोगी निकलिया सी जिन्हें कोई सवाल जवाब किए सन, पुछया सी महाराज जदों मालश की समा केड़ा है, गुरुदेव नाल कुछ बचन बिलास होए, उत्थे साहब ने एक शब्द उचारण किया सी, बाजी गर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, ये सारा शब्द जिहड़ा जोगी नूं संबोधन करके उचारिया। भावां के जिहड़ा संतोख सारे ये संतोखे नामी एक सेवक ने अपने वल्लों माया दे के सरोवर की सेवा कराई सी। साध संगत कवि संतोख सिंह ये प्रसंग आप सरवण कर चुके हो, कह लगे ने अज मैं तुहानू ओ प्रसंग सुनाना वा। कवि जी मुताबक कह लगे जिस प्रसंग नूं सारी दुनिया जानदी है कि अमृतसर की महिमा किवें होई, बीबी रजनी वाला प्रसंग भाई संतोख सिंह आरंभ कर लगे ने, आपां इस प्रसंग की विचार करनी है। आप कृपा करो अपनी सुरती बिरती नूं करिए एकागर, ते जदों भी आपां इतिहास सरवण करने आ ना, देखो किसे भी मनुख की गल सरवण करने आ, कन्ना नाल आपां सुनने आ, ते बदो बदी साडा मन जिहड़ा वो सारे नक्शे नूं सारी तस्वीर नूं चित्र लैंदा। गल कोई भी होवे किसे थां ते आपां जाइए भी ना, पर गल्लां सुन लईए ते साडा जिहड़ा मन है उहदी तस्वीर बना लैंदा है। जे आम गल सुणिया मन एक फोटो तस्वीर बना लैंदा है, ते जदों आपां गुरु का इतिहास सुनने आ ना, ते अपनी सुरती नूं लै जाइए उस धरती ते जिस धरती ते मेरे गुरु ने एक कौतक वरताए, क्योंकि सिख कोल एक बड़ी वड्डी दात है सुरत दी, सुरती दे मार्ग नाल सिख अंदर दे सफर नूं तय करके कोहां दूर बैठा भी गुरु के चरण परसदा। कृपा करो साध संगत जी एकाग्रता बख्शनी, विचार आरंभ तो पहला समूह माई भाई ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਮ ਜੋਗੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇਮ ਜੋਗੀ ਤਪਸੀ ਮਹਿਦ ਪਿਓ ਬਰਤੰਤ ਵਿਸਾਲ, ਸੁਣ ਪਿਖ ਨਰ ਨਾਰੀ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਪੈ ਤਿਸ ਕਾਲ।
0: ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੀ ਸਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1: ਇਤਨੇ ਵਿਖੇ ਝਗੜ ਤੇ ਤਾਂ ਦੰਪਤ ਚੱਲ ਆਏ ਗੁਰਜਾਂ।
0: ਅਜੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕੌਤਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੰਪਤੀ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
1: ਸੋਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਵਰਨੋ ਜਥਾ ਸੁਦਾਸਰ ਵਿਦ ਤੇ ਕਰਨੋ।
0: ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
1: ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਪੱਟੀ ਨਾਮ ਜਿਸੀ ਕੌਤਕ ਹੈ।
0: ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਤੈਂ ਕੋ ਨਿਰਪਲਗ ਰਾਜ ਕਰੰਤਾ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੰਤਾ।
0: ਇਸ ਪੱਟੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਜਵਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1: ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਤਾ ਪੰਚ ਜਨਮਾਈ ਬਦਤ ਆਰ ਬਲ ਰੂਪ ਸਹਾਈ।
0: ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ।
1: ਸੁੰਦਰ ਅੰਗ ਰੰਗ ਤਨ ਗੋਰਾ ਕਮਲ ਲੋਚਨੀ ਉਰਜ ਕਠੋਰਾ।
0: ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵੀ ਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1: ਦਿਨ ਮੈਂ ਏਕ ਹੋਤੀ ਸਤ ਸੰਗਨ ਅਲਪ ਆਰ ਬਲ ਕੋਮਲ ਅੰਗਨ।
0: ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਤ ਦਾ ਕੋਮਲ ਏ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਕੋਮਲ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਝੁਕਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਝੁਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਸੰਤਨ ਤੇ ਸੁਣੇ ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਜਬੈ ਮਿਲ ਭਨੇ।
0: ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏ ਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀ ਜਾਣੇ।
1: ਜੀਵ ਜੀਵ ਪ੍ਰਤ ਤੀਨੋ ਲੋਕ ਨਿਤ ਪਾਲਤ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰੋਕ।
0: ਇਹ ਬੱਚੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੀ ਪਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਝਬਾਲ ਆਪਾ, ਬੀੜ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, कभी गुरु रामदास के रूप में, कभी धन गुरु अर्जन देव जी के रूप में, कभी गुरु हरगोबिंद साहब के रूप अंदर मेरे साहब ने इस धरती नूं भाग लाए। कुदरती तौर से महापुरुष गुरमुख जपण वाले इन्हां पिंडां विच जांदे होणगे। कवि जी कहिंदे ने अज गुरु के सिख बैठे ने, ते ए छोटी जी बच्ची कोल जाके बैठ गई, ते उत्थे वार्तालाप आरंभ हो गई। क्या तिन्ने भवन जिन्हां नूं लोक कहिंदे ने, जितनी भी सृष्टि है ना, ते इस सृष्टि दे जितने भी जीव ने, सारियां नूं रिज़क देण वाला केवल एक परमेश्वर। इस बच्ची दे कन्नां विच आवाज पै गई कि हर एक दी पालना परवरिश केवल एक वैगुरु करदा है।
1: जो जिस जून जहां होए प्राणी, तां देत भोजन गुण खानी।
0: ते ओ महापुरश आपस विच वार्तालाप कर रहे सन कि भावे जीव किसी भी जून विच होवे, भावे कोई सर्प होवे, भावे कोई पंछी होवे, भावे कोई पशु होवे, पर मेरा वैगुरु इन्ना कु बेअंते ओ कीड़े नूं भी रिज़क देंदा पे है, पानी विच रहण वाले जीव नूं भी रिज़क देंदा पे है, ओ आसमान विच उड़न वाले पंछी नूं भी रिज़क देंदा है। एदा मतलब जेड़ी गल कवि जी कह रहे ने कि गुरसिख आपस विच वार्तालाप करदे ने कि हर एक नूं रिज़क देण वाला केवल एक परमेश्वर है। एदा मतलब ओ गुरमुख गुरु अंगद साहब दे इस शलोक दी शायद व्याख्या करदे होण कि नानक चिंता मत करो चिंता तिची हे। कहन लगे ए शलोक ढुकदा पे है, जल में जंत उपायन तिना पी रोजी दे, उथे हाथ न चली ना को किरस करे, सौदा मूल न होवई ना को ले ना दे, जिया का आहार जियो खाना एओ करे, विच उपाए सायरा तिना पी सार करे, नानक चिंता मत करो चिंता तिची हे। क्योंकि गुरु अंगद साहब की बाणी उचारण की जा चुकी है, सानू इतिहास विचो इशारे मिलणगे, पर खोज आपा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचो करनी। वो गुरमुख कह रहे ने आपस विच के हर एक नू रिजक केवल एक मेरा वैगुरु दिंदा है।
1: श्री गुरु नानक करियो श्लोक, पठत विचारत सो प्रभ लोक।
0: कवि जी कहिंदे ने ए जेड़े रब दे प्यारे लोक सन, इन्हां विच कई पुछदे होणगे भी तुहानू किवें पता लगा कि हर एक नू रिजक जेड़ा ओ परमेश्वर दिंदा है, हर एक जून दे जीव नू दिंदा है। ते उन्हां गुरमुखां विचो एक बोल पिया, ये बच्ची सब कुछ सुनदी पई है, क्योंकि बच्चे दा मन इन्ना कु प्यारा हुंदा है शुद्ध। जिओ जिहा पूरना तुसी इहदे ते पा दोगे ना, महाराज मेहर करे संगत दा पानी मिलदा रहे, ते ए रुख उसे पासे चका कर जांदा। बच्चे दा मन किन्ना कु कोमल है। आ साहिब ने बाणी विच इक बचन कीता है, कहिंदे ने रुख जमदा है ना, ते तुसी उस रुख नू जिहड़े पासे मर्जी चुका दिओ, ओनू सज्जे खब्बे जिधर चुकाना चाहते हो उधर चुका दो, पानी पाई जाओ, अखीर ते रुख जड़ा उस पासे नू झुक जाएगा। ते साहब ने बचपन की गल करदिया ए भी कृपा की, कहन लगे सजना जदों तेरे ते बाल उमर सी, तैनू पता नहीं दुश्मन कौन है, तैनू पता नहीं मित्र कौन है, जिन्हें प्यार करना तू ओदी झोली विच बह जाना। मेरे साहब कहिंदे ने उदो तेरे अंदर दवैश नहीं, एवें तू सियाणा बन गया, जे किते सारी जिंदगी उस बच्चे वर्गा तेरा मन रहिंदा ते तेरी कीमत ता करोड़ा रत्ना नाल भी नहीं सी पै सकदी। साहब ने बाणी दे जिक्र कीता, कहन लगे कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, क्योंकि पेड़ जदों निकलदा बड़ा कोमल है। यही कारण मैं कई बारी साहब दी बाणी पढ़ना वा ना, ते सोचना सतगुरु ने जवान दी गल नहीं कीती, जदों भी गल करनगे बालक दी करनगे, क्योंकि बाल सुभाए जदों कोई भुल होवे उदों गुरु कृपा करके बख्श देंदा है। आ छोटा जिहा बच्चा गोद विच बैठे ते कोई गलती कर लै, मां झिड़के फिर झोली विच पा लैंदी है, ते जदों जवान बच्चा होके अपने बाप दे सामने आकड़े ते बाप कहिंदा सजना अपना राह पकड़ जा, मैं तां अपनी जमीन जायदाद विचों भी तेनू बेदखल कर देना। ये उही बच्चा है जिहड़ा बचपन विच बाप दी गोद विच बैठ के दाड़े दे केस नूं भी हाथ पांदा सी, पर बाप ने फिर भी छाती ना लाना, अज जवान हो के जदों बराबरी करके बोलदा है ते उही बापू घर रखण नूं तैयार नहीं। साहब कहिंदे ने सजना उदों बाल उमर सी, अंदर द्वैत नहीं। सतगुरु ने बाणी विच कहा, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ और हीरा किसका बापड़ा पूजा ना रतन तोर। अज ए बच्ची सुनती पई है, उन्हें महापुरुषा ने पूछा किसी ने भी केड़ा गुरु साहब का बचन है जिदे विच उन्हां ने कहा कि हर एक नू रिजक देन वाला एक परमेश्वर है।
1: तिस्ते सुन कन्या दिल कीनो सोया बेस फल लिख कर दीनो।
0: कवि जी कहिंदे ने उत्थे फिर उस गुरमुख सिख ने श्लोक सुनाया जो गुरु नानक साहब उचार गए ने, ते ए छोटी जी बच्ची ने ना उस वक्त ध्यान नाल सुनिया, ते कहिंदे ने सुनदियां सार इस बच्ची दे मन उत्ते उस श्लोक ने इन्ना कु असर किया, दृढ़ इरादा हो गया मना रब तो बिना दुनिया विच कोई रिजक देण वाला है। वो श्लोक केड़ा है? कवि जी कहन लगे मैं उस श्लोक नू इत्थे

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले

गोबिंद राय महाराज, क्योंकि उस वक्त अजे अमृत की दात तैयार नहीं हुई। आनंदपुर साहब की धरती जिन्हों गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने कहलूर की रियासत विचों जमीन खरीद के शहर वसाया सी, इसका पहला नाम सी माखोवाल। परत के हजूर ने इस शहर का नाम रखा सी चक नानकी। सिख विद्वान प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते ने, जदों हजूर गुरु तेग बहादुर जी पटने तो वापस चक नानकी आए ने, ते कुछ समय इत्थे ठहर के अपने परिवार नूं पटने तो बुलाया, ते गुरु गोबिंद राय जी उम्र 7 साल दे करीब हो चुकी सी। कहिंदे ने आनंदपुर साहिब दी धरती जिहदा नाम चक नानकी सी, अपने पिता दी धरती ते अपने घर भी जदों गुरु गोबिंद राय आए, माता गुजरी नाल, गुरु गोबिंद राय दी दादी माता नानकी नाल कीरतपुर साहिब तो लंघ के जगो चक नानकी पहुंचे, ते गुरु तेग बहादुर जी शहर तो बाहर निकल के, पिंड तो बाहर निकल के जदो लैण वास्ते गए, ते सब तो पहला गुरु गोबिंद राय ने पिता गुरु दे चरणा विच मत्था टेकिया। कहिंदे चरणा दी धूड़, बापू दे चरणा दी धूड़ अपने मस्तक ते लाई, ते मां गुजरी कोल खलोती सी, ओदे वल नेत्र भर के शब्द कह आनंद पया मेरी माए, सत गुरु मैं पाया। उस दिन तो बाद इस शहर का नाम जिदा नाम चक नानकी सी, मेरे गुरु तेग बहादुर जी ने एदा नाम आनंदपुर साहिब रख दिता। जो तवारीख में सानू मिलदा, साहिब गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत हुई, सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दे तन दे दो संस्कार कीते गए। एक संस्कार रकाबगंज दी धरती ते कीता, ते जिस थां ते गुरु तेग बहादुर जी दे शीश नूं उतारिया सी उस थां दा नाम शीशगंज रखिया। दूसरा शीश दा संस्कार आनंदपुर साहिब दी धरती ते कीता। अज भी तुसीं जाओ उत्थे भी इक गुरुद्वारा जिहदा नाम है शीशगंज। गुरु गोबिंद राय ने पिता गुरु दे शीश दा संस्कार कीता, ते जदों चिखा नूं अग दिखाई, लांबू लाटां अग दियां बाहर निकलियां, उस वक्त मेरे गुरु गोबिंद राय दे नाल उन्हां दी भुआ बीबी वीरो दे 5 पुत्र जिहड़े ने, भुआ दे पुत्र उह अपने मामे दे शीश दी बलदी चिखा नूं देखदे पए सन। मामा किरपाल चंद उह चिखा नूं तकदे पए सन। भाई जैते वर्गा जिहड़ा गुरु का बेटा बणिया उह चिखा नूं बलदी होई नूं तकदा पिया सी, ते ज्यों ज्यों अग दियां लाटां बाहर निकल, ते साहिब गुरु गोबिंद राय दे मन ने एक दृढ़ इरादा कीता सी कि जिहड़ी इह जलजल जुल्म दी अग इह भट्ठी बलदी पई है, इस बलदी कोई जुल्म दी लाट नूं मैं सदा लई बजा देवांगा। अर्ज करनी है पंघाणी ते जुग संबंधी, पर सिर्फ अपने तवारीख दे पिछोकड़ जिहड़े पन्ने ने उन्हां संबंधी अर्ज करके। हजूर पिता दी शहादत तो बाद आनंदपुर साहिब टिक गए, ते जदों संगतां आउण लगियां, ते असाम दी धरती दा एक राजा सी रतन राय, जिहदा जन्म गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी कृपा नाल होया सी। ते कहिंदे ने इस दे बापू ने, रतन राय दे पिता ने गुरु तेग बहादुर जी नूं पुछया कि महाराज जदों मेरे पुत्तर दा जन्म होवे तेरी बख्शिश दी निशानी की? ते भाई वीर सिंह कहिंदे ने, एक तां उहदे मत्थे उत्ते केसां दी लिट सी, ते दूसरा जदों उहदे मत्थे नूं तकदे तां ते इंज लगदा सी जिवें लिखे होए एक ओंकार दी झलक पैंदी होवे। कई वारी उहने दर्पण विच खलोणा ते पुछना, मां मेरे मत्थे ते आ शाही काहदी है? ते भाई वीर सिंह लिखदे ने, मां कहना, पुत्तर इह शाही नहीं, इह गुरु नानक साहिब दे घर दी निशानी आ, उहदा निशानी गुरु नानक दी कृपा नाल तेरी आमद होई। फिर उहदे मन विच इक तीबर तांग पैदा होई ਪੰਘਾਣੀ ਦੇ ਜੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਹੋਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੀਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਟਿਕਾ। ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह